ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार 5:00 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक NBC को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की। विशेषज्ञों के एक दल ने बताया है कि पिछले महीने वेनेजुएला में आए दो भीषण भूकंपों के कारण बड़ी संख्या में इमारतें ढह गईं, जिसे पैनकेक कोलैप्स कहा जाता है। उनका अनुमान है कि लगभग 10,000 इमारतें इस्तेमाल योग्य नहीं रहीं। 24 जून की त्रासदी के 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तक 4,333 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। टीम लीडर मियामोतो हिदेकी इमारतों के संरचनात्मक डिजाइन के विशेषज्ञ हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने रविवार को तटवर्ती राज्य ला ग्वायरा के कातिया ला मार में NHK से बात की, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मियामोतो ने बताया कि कई जगहों पर इमारतें ढह गईं क्योंकि तेज झटकों के कारण इमारतों के पिलर टूट जाने से वो सीधे नीचे गिर गईं। उन्होंने इस घटना के लिए कई स्तंभों में सरियों की कमी और तटीय क्षेत्रों की नर्म जमीन को जिम्मेदार ठहराया। दल का अनुमान है कि ला ग्वायरा में लगभग 10,000 इमारतें यानी लगभग 13% पूरी तरह से नष्ट हो गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उपयोग के लायक नहीं रहीं। यह आंकड़ा वेनेजुएला सरकार द्वारा घोषित नवीनतम आंकड़े से कहीं अधिक है। अमरीकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार रूसी खुफिया अधिकारी यूक्रेन पर सैन्य हमलों के लिए आवश्यक अत्याधुनिक सामग्री प्राप्त करने हेतु जापान का उपयोग कर रहे हैं। रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था, पुतिन ने कैसे बनाया जापान को जासूसों का अड्डा। ये लेख 3 महाद्वीपों के कई खुफिया और सरकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार पर आधारित था। लेख में कहा गया है कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया तो उसके तुरंत बाद पश्चिमी देशों ने अपनी राजधानियों से सैकड़ों रूसी जासूसों को निष्कासित कर दिया था। कुछ अधिकारियों के हवाले से लेख में कहा गया है कि निष्कासित जासूसों में से कई एक अनपेक्षित स्थान पर पाए गए, जो है जापान। लेख में यह भी कहा गया है कि रूस की सरकारी एयरलाइन एरोफ्लोट का टोक्यो स्थित कार्यालय एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU का एक अनुभवी अधिकारी कार्यालय के कर्मी के रूप में तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अधिकारी रूसी युद्ध मशीनरी को आपूर्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन सरकार के अनुसार रूसी मिसाइलों और ड्रोनों में से 90% में जापानी घटक शामिल हैं। उसका कहना है कि यूक्रेनी पक्ष ने जापान सरकार से बार बार उच्च तकनीक और अन्य उत्पादों पर निर्यात नियंत्रण को मजबूत करने का अनुरोध किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान, फिलीपींस, अमेरिका और 11 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की चीन से एक बार फिर अपील की है। न्यायाधिकरण ने 2016 में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया था। ये मामला फिलीपींस ने दायर किया था। चीन इस फैसले को मानने से इनकार करता आया है। इस फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर रविवार को 14 देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें इसे अंतिम कानूनी रूप से बाध्यकारी और निर्णायक फैसला बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 देश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हैं कि चीन के व्यापक समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। वक्तव्य में अस्थिर करने वाली ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया है, जिससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ती हो। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि चीन का 2016 के फैसले को न मानना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत के खिलाफ है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कानून के शासन को कमज़ोर करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को न्याय संगत ठहराया है। इससे पहले 14 देशों ने चीन से इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की फिर से अपील की थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक वक्तव्य जारी किया। न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय नामक फैसले में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि तथाकथित निर्णय महज रद्दी कागज है जो अवैध और अबाध्यकारी है। इसमें कहा गया है कि चीन इस निर्णय के आधार पर किए गए किसी भी दावे और कार्रवाई का विरोध करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हित इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार शाम 5 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक NBC को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है？
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी हैं।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई देकुदासाई, वासाबी वा इरेनाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
6: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई, कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च ना डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: त्सुकावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा त्सुकावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा त्सुकावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार 5:00 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक NBC को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की। विशेषज्ञों के एक दल ने बताया है कि पिछले महीने वेनेजुएला में आए दो भीषण भूकंपों के कारण बड़ी संख्या में इमारतें ढह गईं, जिसे पैनकेक कोलैप्स कहा जाता है। उनका अनुमान है कि लगभग 10,000 इमारतें इस्तेमाल योग्य नहीं रहीं। 24 जून की त्रासदी के 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तक 4,333 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। टीम लीडर मियामोतो हिदेकी इमारतों के संरचनात्मक डिजाइन के विशेषज्ञ हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने रविवार को तटवर्ती राज्य ला गुआइरा के कातिया ला मार में NHK से बात की, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मियामोतो ने बताया कि कई जगहों पर इमारतें ढह गईं क्योंकि तेज झटकों के कारण इमारतों के पिलर टूट जाने से वो सीधे नीचे गिर गईं। उन्होंने इस घटना के लिए कई स्तंभों में सरियों की कमी और तटीय क्षेत्रों की नर्म जमीन को जिम्मेदार ठहराया। दल का अनुमान है कि ला गुआइरा में लगभग 10,000 इमारतें यानी लगभग 13% पूरी तरह से नष्ट हो गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उपयोग के लायक नहीं रहीं। यह आंकड़ा वेनेजुएला सरकार द्वारा घोषित नवीनतम आंकड़े से कहीं अधिक है। अमरीकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार रूसी खुफिया अधिकारी यूक्रेन पर सैन्य हमलों के लिए आवश्यक अत्याधुनिक सामग्री प्राप्त करने हेतु जापान का उपयोग कर रहे हैं। रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था, पुतिन ने कैसे बनाया जापान को जासूसों का अड्डा। ये लेख 3 महाद्वीपों के कई खुफिया और सरकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार पर आधारित था। लेख में कहा गया है कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया तो उसके तुरंत बाद पश्चिमी देशों ने अपनी राजधानियों से सैकड़ों रूसी जासूसों को निष्कासित कर दिया था। कुछ अधिकारियों के हवाले से लेख में कहा गया है कि निष्कासित जासूसों में से कई एक अनपेक्षित स्थान पर पाए गए, जो है जापान। लेख में यह भी कहा गया है कि रूस की सरकारी एयरलाइन एरोफ्लोट का टोक्यो स्थित कार्यालय एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU का एक अनुभवी अधिकारी कार्यालय के कर्मी के रूप में तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह अधिकारी रूसी युद्ध मशीनरी को आपूर्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन सरकार के अनुसार रूसी मिसाइलों और ड्रोनों में से 90% में जापानी घटक शामिल हैं। उसका कहना है कि यूक्रेनी पक्ष ने जापान सरकार से बार बार उच्च तकनीक और अन्य उत्पादों पर निर्यात नियंत्रण को मजबूत करने का अनुरोध किया है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान, फिलीपींस, अमेरिका और 11 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की चीन से एक बार फिर अपील की है। न्यायाधिकरण ने 2016 में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया था। ये मामला फिलीपींस ने दायर किया था। चीन इस फैसले को मानने से इनकार करता आया है। इस फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर रविवार को 14 देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें इसे अंतिम कानूनी रूप से बाध्यकारी और निर्णायक फैसला बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 देश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हैं कि चीन के व्यापक समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। वक्तव्य में अस्थिर करने वाली ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया है, जिससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ती हो। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि चीन का 2016 के फैसले को न मानना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत के खिलाफ है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कानून के शासन को कमजोर करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को न्यायसंगत ठहराया है। इससे पहले 14 देशों ने चीन से इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की फिर से अपील की थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक वक्तव्य जारी किया। न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय नामक फैसले में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि तथाकथित निर्णय महज रद्दी कागज है जो अवैध और अबाध्यकारी है। इसमें कहा गया है कि चीन इस निर्णय के आधार पर किए गए किसी भी दावे और कार्रवाई का विरोध करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हित इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार शाम 5 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक एनबीसी को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की।
0: इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डों गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है？
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइट्टे रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी हैं।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं, नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरेनाई दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई देकुदासाई, वासाबी वा इरेनाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक, और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
6: काशिकोमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च ना डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
3: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई। तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोईया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 13 जुलाई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार शाम 5 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक एनबीसी को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की। विशेषज्ञों के एक दल ने बताया है कि पिछले महीने वेनेजुएला में आए 2 भीषण भूकंपों के कारण बड़ी संख्या में इमारतें ढह गईं, जिसे पैनकेक कोलैप्स कहा जाता है। उनका अनुमान है कि लगभग 10,000 इमारतें इस्तेमाल योग्य नहीं रहीं। 24 जून की त्रासदी के 2 सप्ताह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी लापता लोगों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि शनिवार तक 4,333 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई। टीम लीडर मियामोतो हिदेकी इमारतों के संरचनात्मक डिजाइन के विशेषज्ञ हैं और आपदाग्रस्त क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में शामिल रहे हैं। उन्होंने रविवार को तटवर्ती राज्य ला ग्वायरा के कातिया ला मार में एनएचके से बात की, जहां सबसे अधिक नुकसान हुआ है। मियामोतो ने बताया कि कई जगहों पर इमारतें ढह गईं, क्योंकि तेज झटकों के कारण इमारतों के पिलर टूट जाने से वो सीधे नीचे गिर गईं। उन्होंने इस घटना के लिए कई स्तंभों में सरियों की कमी और तटीय क्षेत्रों की नर्म जमीन को जिम्मेदार ठहराया। दल का अनुमान है कि ला ग्वायरा में लगभग 10,000 इमारतें यानी लगभग 13% पूरी तरह से नष्ट हो गईं या बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं और उपयोग के लायक नहीं रहीं। यह आंकड़ा वेनेजुएला सरकार द्वारा घोषित नवीनतम आंकड़े से कहीं अधिक है। अमरीकी समाचार पत्र न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार रूसी खुफिया अधिकारी यूक्रेन पर सैन्य हमलों के लिए आवश्यक अत्याधुनिक सामग्री प्राप्त करने हेतु जापान का उपयोग कर रहे हैं। रविवार को न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख प्रकाशित हुआ जिसका शीर्षक था, पुतिन ने कैसे बनाया जापान को जासूसों का अड्डा। ये लेख 3 महाद्वीपों के कई खुफिया और सरकारी अधिकारियों के साथ साक्षात्कार पर आधारित था। लेख में कहा गया है कि 2022 में जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण शुरू किया तो उसके तुरंत बाद पश्चिमी देशों ने अपनी राजधानियों से सैकड़ों रूसी जासूसों को निष्कासित कर दिया था। कुछ अधिकारियों के हवाले से लेख में कहा गया है कि निष्कासित जासूसों में से कई एक अनपेक्षित स्थान पर पाए गए, जो है जापान। लेख में यह भी कहा गया है कि रूस की सरकारी एयरलाइन एरोफ्लोट का टोक्यो स्थित कार्यालय एक ऐसा अड्डा बन गया है जहां रूस की सैन्य खुफिया एजेंसी GRU का एक अनुभवी अधिकारी कार्यालय के कर्मी के रूप में तैनात है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी रूसी युद्ध मशीनरी को आपूर्ति पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि यूक्रेन सरकार के अनुसार रूसी मिसाइलों और ड्रोनों में से 90% में जापानी घटक शामिल हैं। उसका कहना है कि यूक्रेनी पक्ष ने जापान सरकार से बार बार उच्च तकनीक और अन्य उत्पादों पर निर्यात नियंत्रण को मजबूत करने का अनुरोध किया है।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। जापान, फिलीपींस, अमेरिका और 11 अन्य देशों ने दक्षिण चीन सागर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की चीन से एक बार फिर अपील की है। न्यायाधिकरण ने 2016 में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज कर दिया था। ये मामला फिलीपींस ने दायर किया था। चीन इस फैसले को मानने से इनकार करता आया है। इस फैसले की 10वीं वर्षगांठ पर रविवार को 14 देशों ने एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया, जिसमें इसे अंतिम, कानूनी रूप से बाध्यकारी और निर्णायक फैसला बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 देश मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले की पुष्टि करते हैं कि चीन के व्यापक समुद्री दावों का कोई कानूनी आधार नहीं है। वक्तव्य में अस्थिर करने वाली ऐसी किसी भी एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध किया गया है, जिससे क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में पड़ती हो। जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु ने एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि चीन का 2016 के फैसले को न मानना विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धांत के खिलाफ है और ये अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में कानून के शासन को कमज़ोर करता है। चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को न्याय संगत ठहराया है। इससे पहले 14 देशों ने चीन से इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण के एक दशक पुराने फैसले को स्वीकारने की फिर से अपील की थी। चीन के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक वक्तव्य जारी किया। न्यायाधिकरण के मध्यस्थता निर्णय नामक फैसले में लगभग समूचे दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावों को कानूनी रूप से आधारहीन और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए खारिज किया गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के वक्तव्य में कहा गया है कि तथाकथित निर्णय महज रद्दी कागज है जो अवैध और अबाध्यकारी है। इसमें कहा गया है कि चीन इस निर्णय के आधार पर किए गए किसी भी दावे और कार्रवाई का विरोध करता है। इसमें यह भी कहा गया है कि दक्षिण चीन सागर में चीन की क्षेत्रीय संप्रभुता और समुद्री हित इस निर्णय से प्रभावित नहीं होंगे।
1: और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमरीकी सेना ने रविवार को ईरान पर फिर से हमले किए। इससे एक दिन पहले सेना ने बताया था कि उसने ईरान पर सप्ताह भर चली सैन्य कार्रवाई पूरी कर ली है। अमरीकी केंद्रीय कमान सेंटकॉम ने रविवार को सोशल मीडिया पर बताया कि पूर्वी अमरीका समयानुसार शाम 5 बजे उसकी सेना ने ईरान पर और हमले शुरू किए ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से स्वतंत्र रूप से गुजरने वाले आम नाविकों और व्यावसायिक जहाजों पर हमला करने की ईरानी क्षमता को लगातार कमजोर किया जा सके। सेंटकॉम के अनुसार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन हमलों का निर्देश दिया था। रॉयटर्स समाचार एजेंसी ने ईरान के सरकारी टेलीविजन के हवाले से बताया है कि अमरीकी सेना की ओर से रविवार को हमले शुरू किए जाने के तुरंत बाद दक्षिणी शहर सिरिक और होर्मुज जलडमरू मध्य के निकट बंदर अब्बास के आसपास कई विस्फोट सुने गए। रविवार को अमरीकी प्रसारक NBC को दिए टेलीफोन साक्षात्कार में ट्रंप ने ईरान की ओर से अमरीका के साथ वार्ता के बावजूद की गई कार्रवाइयों की आलोचना की।
0: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 20वें पाठ में व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध करना सीखेंगे।
1: ताम वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा है। वो चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ होक्काइदो आई है। दोनों सापोरो शहर में एक मछली बाजार के पास ताजा समुद्री खाद्यों का आनंद लेने के लिए एक रेस्टोरेंट में आई हैं।
0: तो आइए सुनते हैं 20वें पाठ की बातचीत।
2: ओसुसुमे वा नान देसु का?
3: कोनो स्पेशल काइसेन डो गा ओसुसुमे दा यो। इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
2: जा सोरे कुदासाई। वातासी मो わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने रसोइये से कहा,
2: おすすめは何ですか？
1: आपका सुझाव क्या है?
0: रसोइये ने मेन्यू की तरफ इशारा करते हुए कहा,
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。
0: ये खास चावल और मछलियों वाला कटोरा बढ़िया है।
3: इकुरा तो उनी गा ताप्पुरी हाइत्ते रु यो।
0: इसमें ढेर सारे इकुरा और उनी है।
1: तब मिया ने कहा,
2: जा सोरे कुदासाई।
1: तो फिर वही लूंगी।
0: उसे देखकर ताम ने भी वही व्यंजन मंगवाया।
2: वातासी मो।
1: मैं भी।
2: वासाबी वा इरेनाइ दे कुदासाई।
1: वासाबी मत डालिएगा।
0: फिर रसोइये ने पुष्टि की,
3: वासाबी नुकी ने।
0: वासाबी के बिना ना।
1: उसके बाद उसने मिया से पूछा,
3: सोचिरा वा?
0: और आप?
1: तो मिया ने जवाब दिया,
2: वातासी वा वासाबी ओ ताकुसान इरेते कुदासाई।
1: मेरे वाले में ढेर सारी वासाबी डालिएगा।
0: इस बातचीत में काइसेंदोन और वासाबी का जिक्र है। काइसेंदोन का मतलब है चावल और मछलियों वाला कटोरा, और वासाबी एक पौधे की जड़ है। ये पिसी हुई सरसों जैसी झारदार होती है और कच्ची मछली के साथ खाने में अच्छी लगती है।
1: वासाबी की झार जीभ पर ही नहीं, नाक में भी महसूस होती है। मिया ने बहुत सारी वासाबी डलवाई है। लगता है उसे उसकी झार बहुत पसंद है।
0: आज का मुख्य वाक्य है,
2: वासाबी वा इरेनाइ दे कुदासाई,
0: यानी वासाबी मत डालिएगा। ये वाक्य याद करके आप व्यंजन या पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर सकेंगे।
1: इस वाक्य में
4: वासाबी
1: का मतलब है पिसी हुई वासाबी, और
4: इरेनाइ दे कुदासाई
1: का मतलब है मत डालिएगा।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात ये है कि व्यंजन या पेय पदार्थ में कुछ न डालने का अनुरोध करते समय क्रिया के नाई रूप का उपयोग करते हैं और उसके बाद लगाते हैं
4: देकुदासाई।
1: क्रिया के नाई रूप में अंत में नाई लगता है। ये क्रिया का नकारात्मक रूप है। वाक्य में
4: इरेनाई
1: क्रिया
4: इरेरु
1: यानी डालना का नाई रूप है।
0: उसके बाद लगाया है
4: देकुदासाई,
0: तो बन गया
4: इरेनाई देकुदासाई।
0: जो चीज आपको नहीं चाहिए उसके नाम के बाद कारक वा लगाते हैं।
1: क्रिया के नाई रूप के बाद
4: देकुदासाई
1: जोड़कर आप कुछ न करने का अनुरोध कर सकते हैं।
0: तो अब ये वाक्य बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
4: इरेनाई देकुदासाई, वासाबी वा इरेनाई देकुदासाई।
1: अब एक कैफे में चल रही छोटी सी बातचीत सुनते हैं। इसमें ग्राहक पेय पदार्थ में कोई चीज न डालने का अनुरोध कर रहा है।
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
6: かしこまりました。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ।
1: पहले आदमी ने कहा,
5: ऑरेंज जूस 1つ氷は入れないでください。
0: एक संतरे का रस, बर्फ मत डालिएगा।
4: ऑरेंज जूस
1: है संतरे का रस।
4: हितोत्सु
1: का अर्थ है एक, और
4: कोरी
1: का मतलब है बर्फ। उस आदमी को संतरे के रस में बर्फ नहीं चाहिए, इसलिए उसने कहा
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: जवाब में महिला ने कहा
6: काशिकुमारीमास्ता।
1: जी,
0: ये अच्छा या समझ गई कहने का औपचारिक तरीका है।
1: तो अब सुनिए और दोहराइए
4: कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई। कोरी वा इरेनाई दे कुदासाई।
0: अब आप भी वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि आप दुकानदार से कहना चाहते हैं कि आपकी सलाद में ड्रेसिंग ना डाले। ड्रेसिंग को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ड्रेसिंग, ड्रेसिंग।
0: इस वाक्य में क्रिया डालना का जापानी शब्द होगा
4: काकेरु,
0: और उसका नाई रूप है
4: काकेनाई, काकेनाई।
0: तो कोशिश कीजिए।
6: ドレッシングはかけないでください。ドレッシングはかけないでください。
1: अब मान लीजिए कि आप खाना ऑर्डर कर रहे हैं और दुकानदार से कहना चाहते हैं कि उसमें मिर्च न डाले। मिर्च को जापानी भाषा में कहते हैं
4: तोगाराशी, तोगाराशी।
1: उसका नाई रूप है
4: स्कावानाई, स्कावानाई।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए
3: तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई, तोगाराशी वा स्कावानाई दे कुदासाई।
0: और अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो मिया की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
2: おすすめは何ですか？
1: इसमें
4: おすすめ
1: का मतलब है सुझाव। तो
4: おすすめは何ですか
1: का मतलब है आपका क्या सुझाव है। इसके जवाब में रसोइया आपको बताएगा कि रेस्तरां का सबसे लोकप्रिय व्यंजन कौन सा है या उसके अनुसार सबसे स्वादिष्ट व्यंजन कौन सा है।
0: तो अब उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
4: おすすめは何ですか？
1: और अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: おすすめは何ですか？
3: このスペシャル海鮮丼がおすすめだよ。イクラとウニがたっぷり入ってるよ。
2: じゃあそれください。
6: 私も。あ、わさびは入れないでください。
3: わさび抜きね。そちらは？
2: 私はわさびをたくさん入れてください。
0: अब बारी है अंश काइतो के साथ खाना पीना की। आज हम बता रहे हैं होक्काइडो के प्रसिद्ध समुद्री खाद्य पदार्थों के बारे में।
1: होक्काइडो जापान सागर, ओहोत्सुक सागर और प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है। इस वजह से वहाँ का मत्स्य उद्योग बहुत समृद्ध है।
0: वहाँ केकड़ा, समुद्र फेनी, सामन, इकुरा यानी सामन के अंडे और अन्य बहुत सारे समुद्री खाद्य खूब मिलते हैं।
1: दुनिया भर में फैले खाने पीने के शौकीन लोग होक्काइडो के समुद्री खाद्यों का स्वाद पहचानते हैं। खास तौर पर यहाँ की सीपों का बड़ी संख्या में निर्यात होता है।
0: होक्काइडो के बंदरगाहों के पास बहुत सारे रेस्तरां हैं, जहाँ कच्चे केकड़े या झींगा मछली के स्थानीय व्यंजनों का आनंद लिया जा सकता है। ताज़ा समुद्र फेनी और समुद्री साही भी बहुत स्वादिष्ट होती हैं।
1: अगर आप होक्काइडो घूमने जाएं, तो मौसमी समुद्री खाद्य का भी भरपूर लुत्फ जरूर उठाइएगा। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम और मिया होक्काइडो में घूमेंगी। तब तक के लिए सायोनारा।

0: ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। जापान, फिलिपाइन, अमेरिका और 11 दीगर ममालिक ने बहरह जनूबी चीन से मुतालिक बैन अलाक्वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल के फैसले को कबूल करने के चीन से अपने मुतालबे की तजदीद की है। 2016 में ट्रिब्यूनल ने तकरीबन इस पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक्वामी कानून की खिलाफ वर्जी की बिना पर मुस्तरद कर दिया था। फिलिपाइन ने मुकदमा दायर किया था। बीजिंग ने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। 14 ममालिक ने इतवार को फैसले को 10 साल मुकम्मल होने पर एक मुश्तरका बयान जारी किया। बयान में फैसले को हतमी कानूनी तौर पर पाबंद और कतई करार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि 14 ममालिक सालिसी ट्रिब्यूनल के फैसले की तौसीक करते हैं कि चीन के वसी समंदरी दावों की कोई कानूनी बुनियाद नहीं है। बयान में किसी भी ऐसे गैर मुस्तहकम या यकतरफा इकदाम की सख्त मुखालफत का इरादा किया गया जिससे खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को खतरा लाहक हो। जापान के वजीर खारजा मोतेगी तोशिमित्सु ने एक बयान जारी किया जिसमें कहा गया है कि चीन का 2016 के फैसले को कबूल करने से इनकार तनाज़ात के पुरअमन हल के उसूल के खिलाफ है और आलमी बिरादरी में कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाता है। चीन ने बहरह जनूबी चीन में अपने इलाकाई दावों को दुरुस्त करार दिया है, जबकि 14 ममालिक ने इस समंदर पर बैन अलाक़वामी सालिसी ट्रिब्यूनल के एक दहाई कबल किए गए फैसले को कबूल करने के अपने मुतालबे की तजदीद की है। चीन की वजारत खारजा ने इतवार को एक बयान जारी किया। ट्रिब्यूनल के फैसले ने, जिसे सालिसी अवार्ड के नाम से जाना जाता है, तकरीबन पूरे समंदर पर चीन के दावों को कानूनी बुनियादों की कमी और बैन अलाक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करार देते हुए मुस्तरद कर दिया था। चीनी वजारत खारजा के बयान में कहा गया है कि नाम नहाद अवार्ड रद्दी के टुकड़े के सिवा कुछ नहीं है, जो गैरकानूनी है और इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। उसने कहा कि चीन अवार्ड पर मबनी किसी भी दावे और इकदाम की मुखालफत करता है। उसने मजीद कहा कि इस अवार्ड से चीन की इलाकाई खुदमुख्तारी और बहरह जनूबी चीन में समंदरी मफादात मुतासर नहीं होंगे।
1: अब आज की अहम खबरों की सुर्खियां। अमरीकी फौज ने इतवार को ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू किए, जिससे एक दिन कबल उसने मुल्क के खिलाफ एक हफ्ते के दौरान हमलों का सिलसिला मुकम्मल करने का ऐलान किया था। इतवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीकी वस्ती कमान ने ऐलान किया कि अमरीकी मशरकी वक्त के मुताबिक शाम 5 बजे उसकी फोर्सेज ने ईरान के खिलाफ मजीद हमले शुरू कर दिए, ताकि आबनाए हुरमत से आज़ादाना तौर पर गुजरने वाले गैर फौजी और तिजारती बहरी जहाज़ों पर हमलों की ईरान की सलाहियत को कम किया जा सके। और माहिरीन की एक टीम ने कहा है कि वेनेजुएला में गुज़श्ता माह आए दो शदीद जल्जलों की वजह से बड़ी तादाद में इमारतें तकरीबन अमूदी तौर पर मुनहदम हुई, जिसे पैनकेक कोलैप्स यानी तह दर तह इन्हदाम कहा जाता है। और न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक रूसी इंटेलिजेंस अफसरान ने यूक्रेन पर फौजी हमले के लिए हाईटेक सामान की खरीदारी की गरज से जापान को बतौर मरकज इस्तेमाल किया। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।